देखो अचन चे जाके देखो इस घर बुजुर्ग का की सत्कार है ते मां बाप का सत्कार है ते बिना कुछ तो रिश्ता कर रहा है पर अज साडा कल्चर किथे चला गया असी जिन्हों कल्चर बनाई बैठे पैरां च पा के घूमू कभी बीबियां उधर नचाइया कभी उधर नचाइया आज साडा अमीर कल्चर जिन्हों असी कमाना है जिन्हों जिंदगी भी धारण करना है ते जिहड़ी मां की ममता है वह आवाज कितों नहीं मिलती गुरमुखो मां तां रखवाली करती है हुण भावें ज्योति साहिब गुरुद्वारा वह होर तरह बना दिता गया जिन्हां पुरातन जब दर्शन किए ने अगे सन गुरु के लाला की थां उन्हां दी यादगार ते बूहे विच माता गुजरी की थां सी हुण उत्थे नहीं मिलती बूहे विच माता गुजरी की याद समाज चाहिए ते पिछे गुरु के लाला दी ते उत्थे जदों किते लंघणा ते मैं उस दरवाजे नूं देख के आपो अपनी सोच हुंदी है माता गुजरी वाली थां ते खलो के कहना नहीं मां जिन्हें बनाई तेरी यादगार बूहे विच तां ही बनाई मां पहरा दिंदी है मेरे लाला नूं तत्ती वाह ना लग जाए मां पहरा देती है इसे करके प्रोफेसर मोहन सिंह ने एक शब्द किया कि मां वर्गा कनशावां बूटा मेनू नजर ना आए जिस तो लैके छां उदाही रब ने सुर बनाए बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुकिया कमलां दे ऐ पर फुलां दे कमलाया ए बूटा सुक जाए दुनिया दे बूटे जड़ सुकदे ने ते तां सुकदा है पर मां बूटे का फल किते टुट जाए पुत्र धी चला जाए तो कमला जाता है वाहिगुरु मेहर करे सानू गुरमत विच रह के सिखण दी जांच अपने विषय वल तुरां फिर तुरीए सारिया विचों दी जोत है एक संत क्यों दूजा साध क्यों एक साखत क्यों दूजा मनमुख क्यों प्यारे पानी की बूंद पानी विच मिलेगी पानी बन जाएगी सिप्पी विच मिलेगी मोती बन जाएगी केले विच डिगेगी कपूर बनेगी सप दे मुंह च डुगेगी ते जहर बनेगी जोत तो सारिया विच परमात्मा दी है पर जिओ जी तेरी जिंदगी विच सोबत बनेगी ओ जाई तेरा जीवन बन जाए भाई साहब ने शब्द वरते ने के सम सर वर्ष है स्वांत बूंद जो सबनी थाई जल अंदर जल हुए मेरा धरती तो उपाई किरख बिरख रस कस करे फल फूल सहाई केले विच कपूर हुए शीतल सुखदाई बिशियर दे मुंह काल कूट चितवे बुरियाई आपे आप वरतदा सत संग सुभाई सारिया विचो आप रहिंदा है पर जीओ जी सोबत आपा करन लग पैंदे आ गुरमुखो ओह जा बंदे दा जीवन बन जांदा है आओ जे उस जोत दे दीदार करने ने सारिया विच देखने अपने अंदर नूं धोण दा यतन करिए गुरु ग्रंथ साहिब विच आसा राज विच इक तुक हुंदी है एक वस्त बूझै तू होवै पाक एक गल तेनू समझ पै जाए तू पवित्र बन जाएगा बिन बूझे तू सदा ना पाक जे तू ना समझिया जितने मर्जी अदर दलेलां लाई पर चेते रखी तू नापाक दर ते भ्रष्टिया होया तेरे कोल गंदगी है वो एक वस्तु है केवल परमात्मा का नाम जे असी सोचिए भी असी शरीरक तौर ते बहुत पाक हाँ बड़े पवित्र ते गुरु साहिब ने देखा कहदा तू पवित्र है भलिया इन्ने कीमती फुल सुगंधी देण वाले तेरे शरीर की संगत करके वह भी बदबू मार दे जिन्हां नूं तू 36 प्रकार के भोजन कहिंदा हिंदू मथियोलॉजी देव से मानदी है तेरा शरीर कहदा पवित्र होए तेरे शरीर की संगत करके तो वह भी गंदगी बन जाते असी पढ़ते नहीं अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया फिरता होवा पाक पवित्र पापी सौ तन कटिया थुका पईया पित जित मुख नामला उचरै बिन नामै रस खाए नानक एवें जानिए तित मुख थुका पाए किन्ना कुछ शरीर पवित्र है कहन लगे कर्पूर पोक सुगंधा परस मनुख्या दे मलिनत मचा रुदर दुर्गंधा नानक अत गर्भेण अज्ञानो जे तू अंदर नु पाक करना है कर्म कांड पाक नहीं करनी पता तेरे अंदर नु पवित्र किन्ने करना है एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है प्रभु के सिमरन मन की मल जाए एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है हर एक सिमर एक सिमर प्यारे एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है के भरिए मत पापा का संग ओ धोपे नामे के रंग वो एक वस्त है जिन्हों बाणी विच हजूर ने कहा कह लगे वो नाम है जरा तेरे अंदर की मैल धोवे तो जे आप बाहर के कर्म कांड तो किते अंदर वाले दिल वाल झाकी ना मारी प्यारो अपने जोत ना चकी तो दूजिया विच किते

0: है वो सर्वव्यापक सुभाष का देवता बन गए ने। एक तो पूर्वलियां चूना दूजे साडे हुण जिथे जिथे असीं बहिणे आ जिहड़ी सुरत साडे विच आउंदी है उहो जिहा साडा जीवन बन जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है परमात्मा सारिआं विच है, प्रमाण मैं भी दे दियांगा सारिआं विच। मैं तां इक्को बेनती करांगा जिहड़ा सारिआं विचों मैनूं मेरे विच दिसण लग पवे, है सारिआं विच पर जे मैनूं अपने विच दिसेगा मैं सारिआं विच देख सकांगा। अज इन्नीआं कु बेनतीआं सिर प्रवान करिओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू मेहर करे, होइयां बेनत भुलां साध संगत आप कृपा करके बख्श देवियां। किसी दे अंदर नूं किसी तरह की कोई ठेस शब्द कहिंदे लगी होवे आप बख्श देना। जिवें गुरमुखा ने आप जी नूं दस्सिया भी है, सवेर की हाजरी आप संगत दी भरांगे, शाम नूं उत्थे जो बाणी लड़ीवार शुरू कीती सहन होते चलेगी, ऐतवार दे दीवान विशेष आप दे दर्शन कीते जाणगे। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: सतनाम धन्नवाद गुरु साहिब

गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर हारे सुन चंदू चिंतायत अनक पाओ विचार चौवे
1: वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह परम

प्रचार किया ओदू अगे इसे प्रकार तरीके चलद चलद बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए।

हम अज्ञान अल्प मत थोरी, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले।

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत वाए कर भले फंदायो पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वह घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारू।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सुभाष सिंह जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां। पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है, बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा मिलके, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो साध।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदान जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना क ना खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जांदी तां माफी मंग लो। यही दस्सिया है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असीं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकरो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन मैं गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बिसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दोबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनूं अपना, यह तो सारी दुनिया नूं भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, ये पहाड़िया नूं अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसों बरतै ऐसे सुनो सिख मन बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है, बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मनदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा है जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलीए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

इस करके थोड़ा ध्यान रखो, देखो किड्डी भैड़ी बूटी है। कल नूं श्रवण करांगे तंबाकू बारे अगे होर ज्ञान, ताकि पता लग जाए तनक तंबाकू सेविया देव पितर जा जाए। माड़ा जिहा तंबाकू सेवन दे नाल कहिंदे देवते ते पितर सब छड़ जांदे ने। पाणी ताक है हाथ का मदरा सम हो जाए। वह बंदा तंबाकू पीण वाले दे हत्थों पाणी लै के पीना भी शराब दे बराबर मन्निया जांदा है। कल नूं बाकी दा श्रवण करांगे। आओ इन्ना क पाप तां लाईए, संसार दे अंदर पता नहीं कित्थे थां थां बीड़ियां सिगटां डिग्गियां। इस करके ताइयों तो नगर कीर्तन दे अगे अगे झाड़ू लाउणा, जल छिड़कना इसे करके शुरू होया कि बीड़ियां सिगटां पंजां प्यारे ने फिर चरण लगते ने, संगत गंदे थां तो थोड़ी लंघेगी। इस करके सारिया थावां ते ध्यान दे नाल रहा।

0: सुपते निसमय सतगुरु मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था के चमेली के फुल गुलाब के फुल लैके मत्था टेकया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिवें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी जाए किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच इह गल इस तरह नहीं है, यह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसणा नूं करिए पवित्र गज के।